0: हेलो
1: भाई यार अनु टाड़े खबर सुनी?
0: ओ हाँ यार खबर तो सुनी।
1: चल चल भाई मेरे शाम का प्रोग्राम कैंसिल
0: यार उधर पिंडो मना लिया भी तो रहा है।
1: हाँ यार वही फिर की बनू
0: ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
1: ਹੈ।
0: ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ
2: ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा लेके आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश ते डांस। जिया के हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उहां के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांसी कोला जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

परफॉर्म किया जाता है गुड डांस। लोग अपने अंदरूनी जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए, देश की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। तो कन्ने एक अलग तरह की ड्रैस होंगी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करू दे एड, पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिद जिन्हें भी भाई ने वो सैमी सर्कल तो फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टैप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टैप करते हैं। ये तो ये स्टैप करते करते जिहड़ा ये डांस का रिदम होंदा है उहदे कन्ने कन्ने इंदी जिहड़ी लय है वह बढ़ती तो घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पैशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंदे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंदा है जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इहदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

सुना दे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसीं दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी ए कीता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा कीता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादी च भी एक स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुड डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देख ही सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ए ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एक ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जेड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: 7998877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
2: 9052869257।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे। मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा।
5: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स।
4: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा। प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ। डीलिंग विद ऑल बैंक।
5: कॉल 6476068110
4: और विजिट sharmamortgages.com।
6: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542947 8355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: याद है मैनू जदो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स करदी हां मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: टैक्स का सीजन आ चुका है पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे होनियां हैं केड़े केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट कीते हन लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं दो लोकेशनस तों नवीआं फाइल्स इत्थे लै रहे ने उत्थे तुहानूं सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई टैक्स दीआं सर्विसिस लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन
2: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बनाउण लई फैमिली लॉ जां फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट फॉर ऑल सर्विसेज कॉल 905-497-1211 905-497-1211
3: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉच सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
4: हाँ मेरे वीर किधर फाइला चक्की फिरदा सवेरे सवेरे
5: ओ पाजी मॉर्गेज लई महीना हो गया एक दफ्तर तो दूजे दफ्तर टक्कर काटदे हुए यार आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मॉर्गेज वाले
4: देख भाई जे तू लेना मॉर्गेज या लोन
6: ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू
5: अच्छा जी
7: आहो जी नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स देन कॉल मिस्टर संधू एट 905-671-2000 नो क्वेश्चंस नो क्रेडिट चेक लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स नंबर रखो याद 905-671-2000 905-671-2000 Mr. Sandhu
8: ਓ ਯਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ
9: ਨਿਰਬਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗੋ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ
10: ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
11: ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
12: ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-518-3200
13: ਕੀਗਾ ਸਿਮਰ
14: ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ
15: ਅਜੀ ਸੁਣਤੇ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ
16: ਅਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਥੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
17: ਜਬ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਤਾ ਹੂੰ ਤਬ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज

0: राजे दे कर सोने दे रब ने संजोग मिलाए ने।
1: आ सुन लिया अखीर ते गाने दा ना चोड़ कढ़ता अगलिया ने, आ सुनो ध्यान नाल।
2: माई को ब्याह बारे पुछे, हाँ पंडित जी, पर पत्री

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव ट्रावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के करण जी और सुखी नेजू साहब वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करनगे और लेटर जिहड़ी खबरां होणगियां उहदे नाल भी सांझ पाई जाएगी। ऑलराइट, काफ़ी सारिया खबरां ने, लेकिन सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज दा जिहड़ा तापमान है वह भी दस दें, लेकिन सूरज सिंह 5:36 ते आया तो शाम नूं 8:57 ते चले जाना। मामा चांसिया सवेरे सवेरे 1:35 ते आया तो 1:32 दुपहरे चले जाना। अज दा तापमान 26 डिग्री, सारा दिन सूरज चमकेगा। कल नूं 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड थंडरस्टॉर्म झक्खड़ झोले आउणगे। बुधवार नूं भी झक्खड़ झोले ते थंडरस्टॉर्म वगैरह मीह आ रहा है। तापमान 27 डिग्री, थर्सडे नूं 28 डिग्री, सेम थिंग झक्खड़ झोले आउणगे, थंडरस्टॉर्म आएगा, बारिश पेगी, बिजली कड़केगी। फ्राइडे नूं भी सेम ही है जी, थंडरस्टॉर्म आउणगे, झक्खड़ झोले आउणगे, बिजली कड़केगी। तापमान 28 डिग्री, संडे नूं सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 26 डिग्री। ऑलराइट, होर खबरां दे विचों खबरां काफी ने, जिन्हां विच अगली खबर स्पोर्ट्स दे रिलेटेड भी तुहाडे नाल गुरप्रीत पुरवा साहब नाल जुड़दे हां, देखदे हां उह की कहिंदे आ। लेकिन ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

0: Listen live Vatno Do Radio with Sukhi Nijjar.
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper. To see cheap flight tickets ni pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Jan to see visa services ni pal de vichu puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar. Call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.
2: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
5: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा। विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: तो देख के ही ऑर्डर दे सकते हो,
1: अच्छा जी क्या
0: क्योंकि
1: बात है
0: उतो बिल्ला सिल्क एंड साड़ी, नीली बार
2: जी।
0: ते होर भी कुछ जेड़े हैगे आ, मैं तो कईयां दे नाम भी नहीं पता जेड़े इंडिया तो आ रहे ने। सो उस दिन नूं तुसी जी उत्थे आ सकते हो। इस तो अलावा जे होर किसी ने भी उत्थे अपने बिजनेस नूं प्रमोट करन लई कोई स्टॉल लगाउणा चाहुंदे हो किसी तरीके का भी, तुहाडा कोई इमीग्रेशन का बिजनेस है, कोई लॉ का बिजनेस है, कोई मॉर्गेज का बिजनेस हैगा, कोई रियल स्टेट का बिजनेस हैगा
1: जी,
0: ते जां फिर तुहाडा कोई होर रेस्टोरेंट हैगा, तुसी कोई वक्खरी चीज भी लैके पिशावरी जुत्ती कहिंदे और हो सकदा कि बहुत सारे पिशावरी जुत्ती दे इत्थे होलसेल बंदे होण, ओह भी अपना स्टॉल ला सकदे उत्थे।
1: बिलकुल हर चीज दे, देखो जो हर शै विकनी है, कोई भी तुसी उत्थे रखो, क्योंकि जनता इन्नी हुंदी है, इन्ने लोग उत्थे पहुंचदे ने, ओह सारी तैयारी करके सोच के आंदे ने वाकई असीं उत्थे जाके बाइंग करनी है, ओह तुसी इस मौके ते जरूर फायदा चुको। स्पोंसर करना तद भी सानू दसो, अगर तुसी स्टॉल लगाना तद भी दसो। और सब तो खुशी वाली गल तुहानू तां शेयर करन लगी एक होर सुखी जी, भी जेरे उत्थे गिफ्ट्स मिलने ने, फ्री गिफ्ट्स। देखो $30 टिकट है, सिर्फ $30 च इंक्लूड एवरीथिंग।
0: अच्छा जी, ओए जरूरी है आपां दसना चाहवांगे कि इंक्लूड टैक्स है ते इंक्लूड टिकट जिहड़ी उन्हां दी
1: फीस वगैरह कुछ नहीं है,
0: कुछ नहीं है,
1: सारा कुछ इंक्लूड,
0: सारा कुछ विच ही आपां साडी कंपनी ने अपनी टीम ने दित्ता
1: जी,
0: सिर्फ उक्का पुक्का $30 है।
2: हां जी हां जी,
1: देखो यह बड़ा वड्डा तुसी कह लो सेविंग करन जा रहे हो, $30 च अगर एक गिफ्ट भी निकल आया सुखी जी तुहाडा, कोई मैं कहना एक सूट भी निकल आया, तो $30 तो ज्यादा वैल्यू का सूट होना, तो इहदा मतलब तुहानू शो फ्री च पै गया, ऐसो वधिया की गल हो सकदी।
0: गारंटी है कि हर बंदे नूं कुछ ना कुछ गिफ्ट निकलेगा,
1: लाजमी इन्ने ज्यादा गिफ्ट तो मैं आप नहीं कन्नी सुने ना, सारे लोग सानू कहंदे पण इन्ने वधिया गिफ्ट आ रहे ने। तुसी आना है किथे, तीयां दा मेला 21 जून, 21 जून याद कर लो, 21 जून एपीयरसन कन्वेंशन सेंटर जरा एयरपोर्ट एंड बिल्कुल स्टील दे कॉर्नर ते है। और कोई जानकारी तुसी कॉल करो 9057990999 ते कॉल करो, और ऐसो वधिया मौका नहीं मिलना, सेविंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। 9057990999 ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਰਾ, ਆਟੋ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਫੋਰ ਆਟੋ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472411 3096 6472411 3100 ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TFSA, RRSP ਜਾਂ RESP ਜਾਂ SIP ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਰਿਟੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰਾਈਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6472411 3109 6472411 3109।
3: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
4: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नायग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट, नायग्रा फॉल्स। कॉल 905-358-0864
3: ढाबा ऑन द फॉल्स।
5: ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6: ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਵਿਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕਵਰਡ ਹੋ। ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ 416-816-6500
7: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji
8: 647-822-9607 नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
9: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
8: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
10: Listen live Vatno Do Radio with Sukhi Nijjar.
11: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਤਨਾ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, 1:00 ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਅਗਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਕਰਨ ਜੀ।
12: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਵਾਂ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁਣੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ।
11: ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵੀ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ?
13: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ तीन चार क्वेश्चन मैं करने ने। एक तो मैं पता करना भी डेट कदों तीन का मेला हो जा रहा है, फिर एक पता करेगा कितने हो जा रहा है,
12: टिकट कितों परचेज,
13: हाँ जी टिकट कितों परचेज करनी है, फिर उत्थे कौन कौन आ रहा है, चार पांच सवाल करने ने। जेरे पहले पांच होंगे कॉलर उन्होंने सी फ्री टिकट अपने वालों नासिर शाह वालों पांच टिकटा फ्री दवागा, और तुसी सिर्फ कॉल करनी क्योंकि मैनू बड़ी खुशी होंगी है तुसी जो सानू एप्रीशिएट करते हो, हूँ साडा भी अखलाकी फर्ज है तुहानू असी एप्रीशिएट करिए तुहानू वेलकम करिए, और तुसी आओ सानू ज्यादा खुशी होगी। साडे वालों पांच टिकटा तुसी आके साडे ऑफिस आके पिक कर सकते हो, जेरा ग्रेट पंजाब प्लाजा है उत्थों आके तुसी पिक कर सकते हो, फिजिकली तुहानू आना पेगा, पांच टिकटा तुहानू पिक कर सकते हो। जेरे पहले पांच बंदे होंगे असी उन्होंने लाइना खोलन लगे हैं, लाइन तो नंबर नोट कर लो 905-799-0999 याद रखना 905-799-0999 स्टूडियो का नंबर है, तुसी इत्थे कॉल करके तुसी दसना जेरा असी सवाल करांगे। तो पहला सवाल असी पुछन लगे हैं तुहानू इह शो तीआं दा जेरा पिछले कई सालों तो हो रहा है किन्नवां साल है किथे हो रहा है और केरी डेट है, यह सारा तुहानू असी सवाल पहला सवाल असी पुछन लगे हैं। तीआं दा मेला कदों हो रहा है और कित्थे हो रहा है जी, लैणा असी खोल रहे हैं 905-799-0999 ते तुसी जानकारी दे सकते हो और एक टिकट तुसी विन कर सकते हो। पहले पांच कॉल जी,
11: लो जी देखते हैं पहली कॉल केड़ी है जी। आनू जी हेलो, रणवीर जी अपने रेडियो की आवाज नू कट कर लो। हेलो
14: हेलो
11: जी जी जी बोलो कुछ।
14: हां जी सत श्री अकाल जी।
11: सत श्री अकाल।
14: 21 जून नु हो रहा जी ते पियर्सन एयरपोर्ट बैंकट हॉल जी।
11: बैंकट हॉल के कन्वेंशन सेंटर।
14: कन्वेंशन सेंटर।
13: हां जी लो जी तुसी टिकट जीत गए हो। नंबर दसो अपना
14: 647
13: जी
14: 839
13: जी
14: 9575।
13: वाह जी वाह। लो जी टिकट तुसी जीत चुके हो।
11: टिकट जीत चुके हो, टिकट दा की करोगे तुसी?
14: अपनी वाइफ नूं प्रेजेंट करांगा जी।
11: वाह जी वाह, क्योंकि फादर्स डे दा तोहफा तुसी उन्हां नूं दे रहे हो।
13: हाँ जी, बच्चियां दी मां नूं तुसी बल्ले बल्ले कराती सर जी।
11: बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो 9057990999 ते देखते हैं जी अगले साडे कॉलर कौन है। और शाह साहब तद तक मैं एक होर आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कराइए जी।
13: जी
11: इन्हां इस आर्टिस्ट की भी काफी डिमांड, जेडे इत्थों दे बच्चे आ जेडे ओह कहिंदे कि क्योंकि इह भी मुंडा अमेरिकन है और तीन अपने कुछ साल पहला तिया च आया सी
13: जी,
11: ते काफी लोग
13: पहले कॉल ले लो।
11: चलो जी जी आयानु जी। हेलो
15: जी
11: जी
15: जी जी
11: जी जी बोलो सर
15: जी। क्वेश्चन आपने किया
13: की अपना नाम की जी?
15: जी शाह साहब मेरा नाम अर्षद अली है
13: जी। अर्षद भाई है दसो भी है शो कितने हो जा रहे हैं और कदों जा रहे हैं?
15: ये तो 21 जून नु हो रहा है ते वो पीरसन कन्वेंशन सेंटर च हो रहा है।
13: कन्वेंशन सेंटर
11: पीरसन कन्वेंशन सेंटर किथे है जी, कोई एड्रेस पता?
13: एयरपोर्ट दे नेड़े
11: पैंदा
13: जी। अच्छा ए दसो भी इत्थे तुहानू पता कौन कौन आ रहे हैं? मन्नत नूर जी लॉन्ग लाची जिंदा गाना बड़ा हिट होया सी ओ भी आ रहे ने। लो जी नंबर लिखो जी इन्हां दा अर्शद साहब दा जी, तुहाडा नंबर लिख सकदा है तुसी आके टिकट पिक कर सकदे हो।
11: थैंक यू सर
13: जी। सुखी जी कोई गाना सुनाओ केरे साडे आर्टिस्ट
11: आ रहे। हां जी नाल दे नाल नंबर दस देने क्योंकि इस स्टेशन ते होर भी प्रोग्राम चलदे ने, सारे दे अलग अलग नंबर ने। सो साडा नंबर जेहड़ा दो बजे तक है ओ 9057990999 है जी।

0: सेट चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट
2: जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: आखरी अपील साड़ी रद्द हो गई।
5: ओ भरावा साड़ी भी अपील रद्द हो गई है।
6: मैं ता तुहानू पहले ही कहा सी मम्मी डैडी दा इमिग्रेशन दा केस स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन वालियां तो करवाओ।
7: सुपर वीजा फॉर पेरेंट्स, विजिटर वीजा, पेरेंट्स परमानेंट केस, स्किल्ड वर्कर्स, स्टडी वीजा, स्पाउसल वीजा अते रिफ्यूजल केसा दे माहर तुहाडे हर तरह दे वीजे दे सुपर स्पेशलिस्ट।
8: स्मार्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन 7900 फॉर इंटीरियो स्ट्रीट स्वीट 306 Brampton 9057958999
9: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन विल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी ता सोचन दी लोड़ नहीं इको नाम याद रखो लॉ ऑफ अमन शर्मा जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज अमन शर्मा एलएलबी बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नॉटरी पब्लिक 25 चेरीक्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन कॉल 905-913-2355 9059132355
10: ओ आज ता कमाल ही होगी घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदो ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आणगे मैं गया लाइन ही कगल उसे वेले गड्डी चकी ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मुरे ले जा खड़ी करती
11: जी हां एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते फ्रिज स्टोव डिशवॉशर लॉन्ड्री सेट जो मर्जी ले जाओ 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी 905-450-2888
12: ना किद्दर दी तैयारी
13: ओ जी मैं रसोई नु निगाह मारी देखया ग्रोसरी मुक गई सारी ते फिर मैं बेस्ट एशियन ग्रोसर दी खिच लई तैयारी
12: अब मेनू पता है आज ग्रोसरी दे नाल नाल आऊ बारो खान पीन दी वारी क्योंकि इना कुल मिलदी है वैरायटी सारी
13: जी हां बेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर जिथे ग्रोसरी ते रेस्टोरेंट दोनों ने जिथे तुहानू मिलेगा फिश गोट करी तंदूरी नान ते स्पेशल देसी स्टाइल पिज्जा फन सर्विस ये प्रोवाइड कर देने बेस्ट स्टेशन ग्रोसर इको प्लाजा विच तिन्नो ग्रोसरी देसी स्टाइल पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट कैम्ब्रिज कॉल 519-621-7774
14: सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबिया पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679

0: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905 564 64 44
0: 905 564 60

क्या बात है, क्या चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, इंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नु। शाम दे विच जुड़ चुके हैं थोड़े नाल एक बार फिर प्रोग्राम पंजाबी लहरां दा, कि ठीक 9 बजे तक थोड़िया साडियां गल्लां बातां होणगियां। लाउने आ रौनकां, सजाउने आ अज दी शाम नु, ते हैप्पी मंडे भाई।